0: दिल में दर्द रहता है,
1: अच्छा
0: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
1: बाप रे,

मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पांव पड़े दिन रात सुने फिर हाय वो किसकी बात हो।

0: अच्छा
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती,
0: बाप रे,
1: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या।